0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगर पालिका पांच सोलु खुम्बू
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis, and I am here to find out why.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
6: प्रभात काया कैरनमा तपाईलाई साथी हृदय रिमाल सँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ।
7: आज 2083 साल असार 12 गते शुक्रबार सन् 2026 जुन 26

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहरी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख्
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
1: अदली सेवा ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रवाहरी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख्न सकने
0: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
2: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने र दिने गरौं मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण और वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण करौ जीवन रक्षा करौ
0: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
3: Sous-titrage Société Radio-Canada

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: स्टूडियो टाइम
4: इट्स 7 AM बिहानको 7 बजे
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

नमस्कार, पूर्वी नेपाल के पहले सामुदायिक रेडियो सुनवाई 102.2 मेगाहर्ज देश का विभिन्न भाग www.sunfm.com संसार भर एक साथ प्रसारण भईर बिहान 7 बजे सोलो समाचार लेकर आईपुगे सौमिला पुरी। मुख्य खबर का शीर्षक मधेश का 4 वटा बाहेक सब पालिक बजेट पेश करे। नेचासरण गांवपालिक लिया करीब 50 करोड़ भन्दा बढ़ी को बजेट। सोतांग गांवपालिक लिया करीब 40 करोड़ को बजेट। सुरूख मुआवजुन एंड फिटनेस सेंटर संचालन में नगर प्रमुख शेर्पा द्वारा उद्घाटन। जिला खेलकूद विकास समिति सुलुखुम्बू को अध्यक्ष में अर्जुन बहादुर रोका मनोनीत। असार 15 गतेदेखि बीपी राजमार्ग को नया ट्रैक बाटो गाड़ी चलाने तैयारी। सरकारी कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका को नमूना परीक्षण करने। ओखलढुंगा का प्रमुख पर्यटकी गणपति को नक्शांकन मार्ग सुशांक बोर्ड राखिने। इंडिया आइवरी कोस्ट जर्मनी नकआउट चरण में प्रवेश।

0: आशा भोली मेरे श्रीमान के छिटो घर पर आने एक्ल बस्ने रुचा दुबाऊ जानू पैला खूब पढ़ने मं अताब हेन मन पैला तो तस्त मं कि दुख कर कमा को पैसा बैंक में अलि जमा करते थो अस्थि घर को लगी कई सामान कि निकलने गो पैसा छेन सामो सामो कुरा में किस मत कर घर बारे बिग्रने जस्त पो हो सको लौ न दीदी संभव दून पर्यो यह तो लघुसो कोलकाता में देखने जस्त लक्षण कटे लघुसो तो
1: खाना जबरदस्ती करे मैं भन्न सकिन खाए बिस्तार बानी हुई गये अभी तो लर लगे छाटने सकिन अभी गाड़ो भैई
0: गाड़ो सारो मैं किसी ठा छ अब खुरक्को हिसाब तो छाने पर्च तुम्हें तो हम सहारा हो क्या बर्बाद होने काम कर हम आमा बुआ ने समाज में बनाने गई प्रतिष्ठा छुट्टे इसको संरक्षण तिमें तंगो
1: दीदी धन्यवाद अब मैं सदैं छाड़े एक असल नागरिक बनने प्रयास करने श्रीमती दुख दिया मेरे सब ठीक परिवार हो मैं माफ कर
0: बारिश में लग सृजना करी धुबेखेरी तुलाने वस्तु व पदार्थ नागु पदार्थ वा नवौषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागु पदार्थ स्वस्थ शरीर को लगी प्रयोग आवश्यक नभएको पदार्थ भनी परिभाषित गरेको छ। यस्ता पदार्थ ने बारिश को केन्द्रीय स्थायी प्रणाली में प्रभाव पारने का साथ ही उसको भावना और सोचाई में परिवर्तन ल्याउँदछ। त्यसैले नागु औषध को प्रयोग प्रसार प्रसार योगता स्वस्थ जीवन लागू औषध मुक्त समाज निर्माण का जिला प्रशासन कार्यालय सोलो खबू र सोलो एफएम को संयुक्त प्रयास में जारी सकोस्।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Studio phone. Studio time.
2: It's 8 a.m. Beautiful afternoon.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्पिन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
4: Where do we begin?
3: With international news you can trust, BBC News.
4: Journeys into the heart of global events.
3: And voices from around the globe.
5: The whole region is in the grip of a severe water crisis. And I am here to find out what.
3: The BBC World Service, right here on Zeno.fm and the Zeno Radio app.
6: A complete piping solutions.
7: यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज अब प्रस्तुत छ कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपाल

0: World's number one tire brand.
1: पुलिस, डंकल, एम्बुलेंस को फोन नंबर जिसके समय अपनी चाहिए ले सकता। कौन टपारो वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौं।
2: सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध।

0: 政府を発表しましてください。
1: Sucana, Sucana, Sucana. Sulung Jumbe Sijumi Sodak Nirman Karya High Sulung Chutrabata Sang Salam Hirai Kosha Nirman Karya Kakrama Matulu Sulung Bata Bula Kosin Sang Havana Rai Kali Tolu Kira Sadan Chutrama Nastad Kahna Gai Bastu Chalama Kata Avatrava Dani Sura Istani Basu Kata Sarva Sadaran Hulai Sabu Dhani Atmana Huna Isi Sucana Matta Tanuro Dani Cha Kupaya जैसे मुद्दा सुधरना उन्हें आवश्यक रूप से नौ जानो देश में आपका बाल बालिका तथा चौपाई या इसके में तो सुरक्षित रख दीजिए सुनील जी देश की उत्तर दक्षिण समिति स्कूल खुलवो बाट बचन र बचाओ यौनसन्नी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनसन्नी हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा किनकि असन्तोष साथीलाई परिचित नदिबाट जोखिमबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ। बाल बालिकाको चालचलन बानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यसको पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ। बाल बालिकासँग नियमित सम्पर्क हुने गरौ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ भरपर्दो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: उखल ढुंगा खोटांग दिक्तल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: उखल ढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजानी उखल ढुंगा
1: संपर्क नंबर 037-595-222 98-52-88-022 98-42-80-30-00

0: ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: लोकलहरी
2: लोकलहरी
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क मा यो हो लोकलहरी
2: लोकलहरी।

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलू दुतकुम नगरपालिका 5 सोलू कुम्बू

नमस्कार। पूर्वी नेपाल के पहले सामुदायिक रेडियो सुनवाई एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज बाट देश का विभिन्न भाग www.sunfm.com संसार भर एक साथ प्रसारण भइरहेको साँझ 5 बजे को सोलो हालचाल लिएर आइपुगी म सौमिला पुरी। प्रतिनिधि सभा को बैठक फेरी सर भोलि बिहान 11 बजे को बोला बैठक विशेष कारणवश आईतवार को सरे संघीय संसद सचिवालय जना प्रतिनिधि सभा नियमावली 2083 को नियम 6 को उपनियम 3 बहुजन सभामुख दोलप्रसाद रिया ने पर्सि आईतवार बिहान 11 बजे बस्ने गरी नया मिति तोक्न इस आज दिवसों 1 बजे को बोला बैठक सूचना ताज कर स्थगित थियो। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा को महाधिवेशन लंबी संसद बैठक स्थगित सभामुख सहित राष्ट्रपा का सभी जसो सांसद महाधिवेशन में भएकाले संसद बैठक प्रभावित बन्दै गएर आएको छ।

जयमसी लसो ख्याफुल्ला चु तामाङ गेताङ मार्गदर्शन सान्सी सुबा श्रोता दुगु रङ्गिता यसु ख्रिस्लामिन्नी जयमसी श्रोता चु तामाङ गेताङ सान्सी सुबा जम्मन श्रोता दुगुदा लानङ थोजे सिमुला टिक्दपिमा रङ्गिसे चु गेताङ तङ सुब मुला पिसे नम्चे था तब मुला ओछे रङ्गिसे गन्ध मायाला सिपुइखा सुब पत्र लागिरिनु लानङ थोजे सिमुला श्रोता परमेश्वरलाई अनुग्रह ग्याम्से देन धापेन तिनी राङ्गी लवान्चाङ परमेश्वरलाई सम्भव वचन बसी नखासी जिन बमुला ओछेङा विश्वास मुला राङ्गी नुन परमेश्वरलाई वचन सानबरी तयार तासी बमुला विषय श्रोता तिनी नै राङ्गी लवान्चाङ बसी खाब विषय चुन हिन्नगी येशु ख्रिस्त याङला उन्न हिन्चेलन परमेश्वर हिन्ना विभताम तिनी नै बसी खाब मुला थेतासी तिनी याङ मिदुगला घुङदी जम्बुलिङ फेपमा याङगा लानन मिदुगुसे योइ खामला तिनी याङ च्यासे त मुला होज परमेश्वर जो अन्न हिन्छे मुबा तिनी मुला नङ्गर्नु तासे त मुला तिनी याङ परमेश्वरलाई वचन छार कबुल ग्याम्से योहन्नालाई किताब ग्याम्से च्यासे त मुला योहन्नालाई किताब एक अध्यायला छ पद हिन्से तेह्र पद धुन याङसे तिनी च्यासे त मुला चुरी चोरङले भ्रिगो मुला परमेश्वर से मिर्गी पुखा बमुबा थे ग्यामसेन जमन मिदुगुसे थेला यालदा विश्वास लगाइ बिसे परमेश्वर से थेदा थे याल लबारे रे पाङबला लागेर पुखा बमुबा थे ज थे याल आइन बमुबा तर थे याल लबारे रे मिदुगुदा गोनालाबरी थे खा बमुबा जमन मि गदेदा ज्ञान बुद्धि पिनबा सत्य याल जा दगबन मुला विव्रताम पाङबरी थे खा बमुबा तथा जम्बुलिङ मिदुगुसे थे त मुआसेनी थे राङ्गलन निगदे मुबग्लारी फेपकाजी तर थेदा राङ्गलन मिदुगुसे मानालनी तर जो मिसे थे त मानलसी थेला थेथोरी विश्वास लजी थेनी दुगुदा परमेश्वरला सन्तान दोबा अधिकार पिन्जी थेनी दुगुजा मिला सेम से मन बान्सार खाजीबै मिला लुइग्याम नबाहिन थेनी दुगु परमेश्वर से शोभा परमेश्वर लन खोल दुगु हिन्ना श्रोता तिनी याङ से चुरी स्याप खामला कि विशेष लसी बाह्र दिन तेह्र पद याङ से च्या खामला कि सु पद दुगु ग्याम से गोबरी बाङ याङ से लासी दमुला चुरी छ पद इन्च आठ पद धोन च्यामा यो नबी भो गोर्की मिला विषय याङ से याङ मुला थेचा यसु ख्रिस फेपकाबन मुला विभताम पाङबरी येशु ख्रिस्ट भन्दा छ महिना गाछा थे खाब मुबा तिग्दबिमा मिदुगुसे यसुला बारेर थेसी यसु त विश्वास लगाइ बिसी खाब हिन्ना श्रोता येशु ख्रिस्ट जम्मन मिदुगुदा ज्ञान बुद्धि पिम्ब सत्य याल प्रकाश हिन्ना जम्बुलिङले फेपकाब मुला बिसिजा योहन्ना से पाङखाब मुबा हो त येशु ख्रिस्ट जम्बुलिङले फेपकाजी तर जम्बुलिङ से थेत वासेनी रङ्गन मिदुगु मुबग्लारी फेपकाजी तर थेदा रङ्गन मिदुगु सेङवा सेनी तर जुन मिसे थेदा मानल चे रङ्गल सेम नाङ्गे थान्जी विश्वास लजी थेने दुगुदा रङ्गल सन्तान दो बा अधिकार पिन्जी चुरी जम्मन बन्द मूल ताम जति गोम बिमा जति मिसे सुदा विश्वास लजी थेने दुगुजा परमेश्वर लकोल दुगु दोजी श्रोता तिनी याङसे याङले खिन्जरी च्याज विषम खोरङ बन स्याप खामुला खरङ लसी बिमा तिनी परमेश्वरला विषयरी गोबरी माइबा निजा च्याङ मुला लामन मिसेजा सुध विदेशी धर्म हिन्ना बिसी बिमुला ओछे यसुला विरुद्ध रे आज बगे लाबा न याङ सेम्राङ मुला श्रोता विशेष लसी याङ तामाङ जाति लिच्छताब कारण जति गौम बिमा चु ज्याबताम र गोबरी याङसे आमै बसे हिन्न बोर्गी काम याङसे गोदो बजा येशु ख्रिस्ट विदेशी दुग्ल लागेर ज्याहिन तर याङ्ल लागेर नुन फेपकाब हिन्न श्रोता जो चु गेताङ सान्सी सुब मुला यति राङ्निसे येशु ख्रिस्त विश्वासला बारेसम तिनी निन्न समय राङ्निसे विश्वासला लसिगो येशु ख्रिस्त राङ्ला जीवनी नुइल सुगो ओछे परमेश्वर येशु ख्रिस्त राङ्निता राङ्लदेन कोल सोसे त मुला सो परमेश्वरला वचन ग्याम राङ्निदा आशिष याङ्गै जयमसी।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Solo FM. Studio time.
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रातको 8 बजे
3: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
4: Wherever you are, stay connected with the wider world with the BBC World Service. Now streaming on Zeno.
5: Rashtraku San, Kisan.
6: Our complete piping solutions.
7: Ahile tapai, Ujyalo Radio Network sundai hunuhuncha. Aba prastut cha, aaja bihana 8 baje prasaran bhayeko karyakram, badalido Nepal ko puna.

0: पाल बनाने हम अभियान सहभागी बनो आगे देखी सजिलो तथा फर फर ऑनलाइन बैंकिंग को फायदा उठाओ बुद्धिनाथ विकास बैंक द्वारा जनहित में जारी बुद्धिनाथ विकास बैंक जनता बैंक में होइन बैंक जनता में जानु पर्दछ
1: Sound check. Sony FM. Studio time.
2: It's 9 PM. Ratko 9 baje. टाइम चेक को साथ न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
3: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्

0: 确。正确。Studio FM, Studio Time.
1: 10 p.m. रातको 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू.